0: बोलो मी
1: क्या है तुम्हारा नाम
0: नाम
2: The natural, the science of the jungle.